0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जागृति बोल, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का?
0: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, हितर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बोन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थे किस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थे कि आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े सामने।
1: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। साथियों, जैसा कि हम जब भी कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो हमारा आपसे बातचीत का एक नया स्वास्थ्यप्रद विषय रहता है। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नए विषय को लेकर हम हाजिर हैं।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, आज हम जिस चीज को लेकर बातचीत कर रहे हैं या फिर कहें कि एक ऐसे फल को लेकर बातचीत कर रहे हैं जो हमारे गांव की पहचान है,
0: बिल्कुल,
1: और धीरे धीरे आधुनिक जीवन शैली में कहीं पीछे छूटता जा रहा है।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, बात कर रहे हैं कटहल की, जिसे कई जगहों पर कटहल भी कहा जाता है।
0: जी हाँ
1: साथियों, कटहल जो है सिर्फ एक फल नहीं है बल्कि पोषण परंपरा और प्राकृतिक का अद्भुत संगम है। हम देखते हैं कि ये भारत के ग्रामीण जीवन में सदियों से भोजन, संस्कृति और स्वास्थ्य का हिस्सा रहा है। मनीषा
0: जी हाँ,
1: आज श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से हम इस विषय को लेकर यही बातचीत करेंगे कि कटहल खाने से स्वास्थ्य पर क्या क्या फायदे होते हैं और भारतीय परंपरा में इसका क्या महत्व रहा है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
0: जी हाँ

0: दोस्तों, इस गीत के बाद भी आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कटहल खाने से स्वास्थ्य पर होने वाले फायदों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के फल दिए हैं जिसमें से प्रत्येक का अपना अलग अलग महत्व और लाभ है।
1: जी जी,
0: इन्हीं में से श्रोता साथियों एक है कटहल, जिसे भारत में कई हिस्सों में फल का राजा भी कहा जाता है। कटहल न केवल स्वादिष्ट होता है साथियों, बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर होता है।
1: बिल्कुल,
0: यह फल गर्मियों के मौसम में अधिक मिलता है कशिश, और इसका उपयोग कच्चे तथा पके दोनों के रूप में किया जाता है। कच्चा कटहल सब्जी के रूप में और पका हुआ कटहल फल के रूप में खाया जाता है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि कटहल में विटामिन, खनिज, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं।
1: जी हाँ,
0: जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। कशिश, हम देखते हैं कि आज के समय में जब लोग फास्ट फूड और अनहेल्दी जीवन शैली के कारण कई बीमारियों से ग्रस्त रहे हैं, ऐसे में श्रोता साथियों प्राकृतिक और पोषक युक्त आहार का महत्व और भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। जैसा कि आपने बताया कि कटहल के अंदर ढेर सारे पोषक तत्व और खनिज पाया जाता है।
0: जी जी,
1: अगर हमारे साथियों को बताएं तो दोस्तों इसके अंदर मूल रूप से विटामिन ए, सी और B6 की मात्रा होती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी इस फल में ज्यादा रहती है।
0: बिल्कुल,
1: और ये सभी तत्व श्रोता साथियों हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम कह सकते हैं दोस्तों कि जैसा कि आपने भी बताया था मनीषा कि कटहल को मुख्य रूप से दो रूप में खाया जाता है।
0: जी हाँ,
1: अगर कटहल कच्चा है तो उसको सब्जी के रूप में हम इसका सेवन करेंगे, और अगर कटहल पक गया है तो श्रोता साथियों इसे फल के रूप में खाया जा सकता है। अब अगर बात करें कि कटहल खाने के ढेर सारे लाभ क्या है स्वास्थ्य को लेकर, तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। साथियों कटहल में भरपूर फाइबर होता है जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है। ये कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है और आंतों को भी स्वस्थ रखता है।
0: जी हाँ,
1: वहीं कटहल में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा होती है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं साथियों, और संक्रमण से हमें बचाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, जिससे हृदय संबंधित बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। और कटहल में प्राकृतिक रूप से शुगर भी पाई जाती है जो कि मनीषा हमारे शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, साथ ही ये थकान दूर करने में भी सहायक है।
0: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि ये त्वचा के लिए भी लाभकारी है। कटहल में एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए और सी पाए जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जो त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाते हैं साथियों। इसके नियमित सेवन से हमारे त्वचा में निखार आता है, झुर्रियां कम होती है और त्वचा लंबे समय तक युवा बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि कटहल शरीर के विषैले तत्वों को बाहर निकालने में भी मदद करता है, जिससे हमारी त्वचा साफ और सुंदर बनती है।
1: जी जी,
0: साथ ही हम देखते हैं कि कटहल में फाइबर अधिक होता है और कैलोरी की अपेक्षा कम होती है, जिससे यह वजन नियंत्रण में भी मदद करता है। यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे श्रोता साथियों बार बार खाना खाने की इच्छा कम हो जाती है। जो लोग मोटापे से परेशान हैं, उनके लिए कटहल एक अच्छा विकल्प माना जाता है। इसी के साथ इसे संतुलित मात्रा में लिया जा सकता है।
1: जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि किसी भी चीज की अति हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। इसलिए श्रोता साथियों हमें इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: अगर इसके पारंपरिक महत्व को लेकर बात करें तो दोस्तों कटहल जो है वो सदियों से भारतीय गांवों में भोजन का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। यह सस्ता, सुलभ और पौष्टिक आहार माना जाता है। साथ ही कटहल से कई तरीके के स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाए जाते हैं मनीषा।
0: जी हाँ,
1: जैसे कि कटहल को सब्जी के रूप में खाया जाता है, कटहल की सब्जी बनाई जाती है, कटहल के पकौड़े भी बनाए जाते हैं श्रोता साथियों।
0: जी हाँ,
1: साथ ही इसका उपयोग अचार में भी किया जाता है। हम देखते हैं कि आयुर्वेद में कटहल के फल, बीज और पत्तों का उपयोग अलग अलग बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कटहल के स्वास्थ्य पर फायदों को लेकर बातें चली रही हैं, और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से बातचीत चल ही रही है कि कटहल के क्या फायदे हमारे स्वास्थ्य पर होते हैं और हम इसका सेवन अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं, ये भी हम गीत से पहले जान पाए थे।
1: बिल्कुल,
0: और कुछ फायदों को लेकर भी बात की थी श्रोता साथियों। यहीं अगर बात करें इसके पर्यावरणीय महत्व को लेकर, तो कटहल का पेड़ पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभकारी होता है मनीषा।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि ये ऑक्सीजन प्रदान करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को भी कम करने में मदद करता है। साथियों, हम देखते हैं कि आज के समय में जब लोग जंक फूड की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में कटहल जैसे प्राकृतिक और पौष्टिक फल का महत्व और बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: हम देख सकते हैं कि ये प्लांट बेस्ड डाइट का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। और साथियों, हम कह सकते हैं कि कटहल एक ऐसा फल है जो स्वास्थ्य, परंपरा और पर्यावरण तीनों के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति ने हमें जो दिया है वह हमारे लिए सबसे बेहतर है। बस श्रोता साथियों, आज जरूरत है हमें अपने खान पान में ऐसे पारंपरिक और पौष्टिक खाद्य पदार्थों को शामिल करने की, साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी इसके महत्व के बारे में अवगत करवाने की।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि कटहल का पेड़ कम देखभाल में भी अच्छा फल देता है। ये किसानों के लिए लाभकारी है, पर्यावरण के लिए अच्छा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही कशिश, कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि कटहल एक ऐसा फल है जो केवल स्वाद ही नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है साथियों।
0: बिल्कुल,
1: और कई बीमारियों से बचाने में मदद करता है। कशिश, हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लोग प्राकृतिक आहार से दूर होते जा रहे हैं, वहां कटहल जैसे फल हमें प्रकृति की ओर वापस लौटने का संदेश देते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में कटहल को शामिल करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: ताकि श्रोता साथियों हम स्वस्थ रहें, ऊर्जावान रहें और संतुलित जीवन जी सकें। कटहल सिर्फ एक फल नहीं है साथियों, बल्कि प्राकृतिक औषधि का एक रूप है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम के माध्यम से जान पाए हैं दोस्तों कि कटहल सिर्फ एक साधारण फल नहीं बल्कि हमारे जीवन, स्वास्थ्य और परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ एक अमूल्य उपहार है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर इन चीजों को भूल जाते हैं साथियों, जो हमारे आसपास सहज रूप से उपलब्ध होती है।
1: बिल्कुल,
0: और कह सकते हैं कि हमारे लिए बेहद लाभकारी भी होती है।
1: जी हाँ,
0: और कटहल उन्हीं में से एक है मनीषा। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि सच्चा स्वास्थ्य महंगे और विदेशी खाद्य पदार्थों में नहीं है बल्कि हमारे अपने देसी और प्राकृतिक आहार में छिपा हुआ है।
1: जी हाँ
0: दोस्तों, कटहल जैसे फल हमें ये बताते हैं कि प्रकृति ने हमारे लिए हर जरूरत का समाधान पहले से तैयार करके रखा है।
1: जी बिल्कुल,
0: बस जरूरत है उसे पहचानने की और अपनाने की। ऐसे में आज के युवाओं को हम यही कहना चाहेंगे कि वे अपने जड़ों से जुड़े, अपने पारंपरिक भोजन को महत्व दे और उसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करें।
1: जी
0: क्योंकि दोस्तों, जब हम अपने खान पान में ऐसे पौष्टिक और प्राकृतिक विकल्पों को अपनाएंगे तो हम न केवल खुद को स्वस्थ बना पाएंगे बल्कि अपने समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि कटहल एक अत्यंत पोषक युक्त और स्वास्थ्य वर्धक फल है जो शरीर के लगभग हर अंग के लिए लाभकारी होता है। यह न केवल श्रोता साथियों प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि पाचन तंत्र, हृदय, त्वचा और हड्डियों और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में कशिश हम देखते हैं कि जब लोग कृत्रिम और प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों की ओर अधिक आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे में श्रोता साथियों कटहल जैसे प्राकृतिक और पौष्टिक फल का महत्व और भी बढ़ जाता है। हमें अपने दैनिक आहार में कटहल को शामिल करना चाहिए साथियों, ताकि हम एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जी सके। कहा जा सकता है साथियों कि कटहल केवल एक फल नहीं बल्कि स्वास्थ्य का खजाना भी है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम के अंत में हम हमारे साथियों को यही कहना चाहेंगे कि दोस्तों, प्रकृति की गोद में छिपा हर फल एक संदेश देता है कि सादगी में ही असली समृद्धि है और कटहल जैसा देसी स्वाद आपको अपनाना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि स्वास्थ्य, परंपरा और खुशहाली को अपने जीवन में बसाना ही सच्चा स्वास्थ्य है।
1: जी बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं मनीषा कि कटहल जैसे फलों को अपनाना पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी को दर्शाएगा। यह हमें दोस्तों प्रकृति के करीब तो लेकर आएगा ही, साथ ही हमारे स्थानीय किसानों को हमें समर्थन देगा।
1: जी हाँ,
0: और टिकाऊ जीवन शैली को और भी ज्यादा प्रेरित करेगा। इसलिए दोस्तों, आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने भोजन में कटहल जैसे पारंपरिक और पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों को स्थान देंगे और साथ ही अपने परिवार और समाज को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ,
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001।
0: जी
1: और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
1: नमस्कार।

सेहत नो राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तक ही करूंगी, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ल ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज से सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक प्रेरणादायक विषय के साथ में। साथियों, जहाँ हम बात करते हैं जीवन की उन सच्चाइयों की जो हमें हर दिन थोड़ा बेहतर बनाती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साथियों हम अपनी गलतियों से कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, गलती ये तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हम डर जाते हैं, कभी कभी शर्म महसूस भी होती है और कभी कभी तो हम खुद से ही नाराज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर गलतियां न होती तो क्या हम सीख पाते? तो आज के इस कार्यक्रम में हम यही समझेंगे कि गलतियां हमारी सबसे बड़ी शिक्षा कैसे बन सकती है और हम अपनी गलतियों से सीख कैसे सकते हैं। तो बातें ढेर सारी होंगी श्रोता साथियों, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो पहले मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में, फिर हमारी बातचीत की हम फिर से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि गलतियों से हम कैसे सीख सकते हैं।

उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उनसे किसी चीज में गलती हो गई तो लोग क्या कहेंगे, उन्हें डांट पिट सकती है, या फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि इससे उनका इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, उनकी इमेज खराब हो जाएगी, और साथ ही वे कभी कभी खुद पर शर्म भी महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे में हमें याद रखना है दोस्तों कि गलती से ज्यादा खतरनाक है उससे कुछ न सीखना। गलती तो होगी दोस्तों, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी न किसी से कुछ गलतियां होती है, और फर्क बस इतना है कि हम उस गलती को स्वीकार कैसे करते हैं और उससे सीखते कैसे हैं कुछ। क्योंकि गलतियां हमें कमजोर नहीं बनाती दोस्तों, गलतियां अगर हमारे जीवन में आती है या हमसे होती है तो वो हमें मजबूत भी बनाती है और हमें कुछ नया सिखाती है। इसलिए याद रखे कि गलतियों को कभी शर्म का नाम न दे श्रोता साथियों, गलतियां तो होंगी, बस गलतियों से हमें सीखना है। अब दोस्तों सवाल ये है कि हम गलतियों से सीखे कैसे। जैसे कि गलतियां तो हमसे हो गई, हम उस गलती से डर नहीं रहे हैं, तो फिर तो हमें उस गलती से कुछ नया सीखना होगा। तो श्रोता साथियों, सबसे पहले तो आपको एक आदत ये अपनानी है कि आपको अपनी गलती स्वीकार करना सीखना है। श्रोता साथियों, कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोगों से गलतियां हो जाती है लेकिन फिर भी वो उस गलती को मानते नहीं है और अपने ही एटीट्यूड में रहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा होता है दोस्तों कि अगर उन्होंने अपनी गलती मान ली तो लोग उन्हें कमजोर समझेंगे और शायद इससे उनका जो व्यक्तित्व है वो भी बिखर सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे पहला कदम खुद के लिए खुद से ईमानदार होना होता है। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं तो सुधार का रास्ता अपने आप ही खुल जाता है श्रोताओं। दूसरी बात, आपको अपनी गलतियों के कारणों को समझना चाहिए कि गलती आखिर हुई क्यों है। क्योंकि दोस्तों कई बार हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर वो गलती बार बार हो रही है तो हमें उस गलती के कारणों को समझना होगा कि कहीं आपने उस कार्य को करने में जल्दबाजी तो नहीं कर दी, क्या आपने काम को करते समय ध्यान नहीं दिया हो, या फिर श्रोता साथियों आपको उस कार्य की जानकारी नहीं थी। क्योंकि दोस्तों इन सभी चीजों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कारण समझना ही सीखने की पहली शुरुआत होती है। इसलिए आपको सबसे पहले तो गलती को स्वीकार करना सीखना है, और दूसरी बात, आपको अगर वो गलती बार बार हो रही है तो उसके कारणों को समझना है, ताकि दोस्तों अगर आपसे गलती हो जाती है तो आप उससे सीख सकें। तीसरी बात दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण ये कि खुद को दोष देना बंद कर दें, क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर किसी से गलती हो जाती है तो वो हर चीज का ब्लेम खुद पर लेने लगते हैं। अगर उन्होंने जानबूझकर भी न की हो वो गलती, तो भी वह डर डर कर ये कह देते हैं कि ये गलती मेरी ही थी। दोस्तों गलती करने के बाद खुद को कोसना आसान है, लेकिन ये आपको अंदर से कमजोर बनाएगा। इसलिए आप खुद से ये कहिए कि मैंने गलती कर दी है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं इस गलती से सीखूंगा ताकि मैं इस गलती को वापस ना दोहराऊं। साथ ही आप सुधार के लिए योजना भी बना सकते हैं श्रोताओं, जैसे कि अब आपको ये सोचना है कि अगली बार मैं क्या अलग कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ और उसमें मेरी गलती हो रही है तो उसको आप अलग तरीके से कर सकते हैं साथियों, क्योंकि ये भी एक अच्छा उपाय हो सकता है जिससे आप गलतियों को बार बार नहीं दोहराएंगे। ये सोच श्रोता साथियों आपको बेहतर बनाएगी। तो जैसा कि साथियों हम बात कर रहे हैं कि गलतियों से हम सीख कैसे सकते हैं और सीखने के सही तरीकों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं साथियों, तो ये बातें हमारी आगे भी जारी रहेंगी। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में, तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं और उसको हम पूरी एकाग्रता के साथ नहीं करते हैं तो उस काम में हमसे गलती हो जाती है। और फिर भी श्रोता साथियों, अगर हम उस गलती को ध्यान में नहीं रखते हैं और फिर से वही काम करते हो, फिर से गलती हो जाती है।

फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे एक नए विषय के साथ में कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ साथ